जिंसी डोले वो दिल वाले खैर मना ले लहरा के बोले है। ये लंबी चोटी ना गिनती डोले वो दिल वाले खैर मना ले लहरा के बोले। ओ लेकिन हम हैं वो दीवाने जो ना हार किसी से माने अपने।

माखन उठे झूमेरे झुमके चले जो इटलाती राहों में मार के तू ठुमके। काम की बात कहूँ तू सुन ले, एक अच्छा सा साथी चुन ले, दुश्मन रूप के हजार।

0: Now just imagine. एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता. और एक दिन चर्च में

मन। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

0: मोरे जिया राम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Vishwa Patrika.
2: World Magazine.
3: Pure energy.
1: Filling that void on your drive time. Presenting the perfect combination that you so need at this time of the day.
2: Thank you.
1: Good information from agriculture to AI. A journey around the globe of progressive music.
4: I love you.
1: And to be in the company of the most beautiful people on the planet.
2: Vishwa Patrika is your checkpoint.
1: Creating that mode of togetherness, Vishwa Patrika with me, Keshav Maharaj. Mondays and Thursdays, 4:10 to 5 p.m. on the official voice of the Hindu community in Trinidad and Tobago. Radio Jagriti 102.7 FM, a new awakening. Join me, won't you? Sitaram.

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

ओम हर हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र की जय हो। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड एवरीबॉडी प्रिपेयर फॉर रमन आरती। वी हैव लॉग्ड इन, प्लीज वॉच इट एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेट भगवान श्री राम ब्लेस।

जय पवन सुत हनुमान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सियावर रामचंद्र की जय श्री सरस्वती माता की जय श्री रामायण माता की जय श्री तुलसीदास महाराज की जय श्री गुरु महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय सदगुरु के डनव जय जय सीताराम आप कड़ा बैठे सत्यम बजा भी ऑल ऑफ यू श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम।

की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम डिवोटीज अगेन टू ऑल ऑफ यू, जय सीताराम। वेलकम वंस मोर टू ट्यूसडे नाइट सत्संग, फॉर ट्यूसडे नाइट व्रत, वन ब्रोकन वर्ड टू भगवान श्री राम। दिस ट्यूसडे इज द वन ऑफ फ्लावर, वी ऑफर टू भगवान श्री राम इन ई माला ऑफ लाइफ। एंड दोज पीपल व्हेन दे क्लोज देयर आईज फॉर द लास्ट टाइम, they see Bhagwan in front of us, we'll offer that mala to him. And those whose lives are so pious, only they are truly, truly happy in this world. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Don't allow the world, devotees, to drag you away from Bhagwan Shri Ram. Don't allow the eyes to be your enemy. Don't let your senses be your enemy and steal you from Bhagwan Shri Ram. Don't let your mind disturb your direction, put you somewhere else away from Bhagwan Shri Ram.

रामचंद्र की जय। मैं गुरु जी रोड भगवान से लिसना, भगवान हिये यो कथा, भगवान हिये व्हेन यू सिंग रामायण कथा, हनुमान जी हियरिंग योर कथा एज वेल। यू डोंट बिलीव दैट, प्लीज बिलीव दैट हनुमान जी इज प्रेजेंट।

है, उमापति महादेव की है, पवन सुत हनुमान की है। जय श्री राम। दिस मानस, दिस डिवाइन माइंड, दिस डिवाइन स्टेनलेस माइंड, दिस डिवाइन लेक, शेप ऑफ पाइटी एंड गुडनेस, कथा सेज, यू नो हु एंजॉय दिस? Divine souls enjoy this. Walk with the divine souls. Go where they are going. Sit with them and enjoy this. The company of saints and sages, they sing this Ramayana Katha. Why shouldn't we as well? Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Narayan Bhai Ji, Bhajan.

सजनो इस रात्रि यह स्थान तो घर मत जानो, यहाँ पर भगवान शंकर का मूर्ति तो स्थापित है, इसलिए यह स्थान तो शिव मंदिर है। इस मंदिर में इस तीर्थस्थान में बैठकर मन मने काट कर भगवान को तुम स्मरण करो, उनका उच्च नाम जप करो। भगवान शंकर ने कहा कि हे भक्तजनों आवो बैठो जपो हरि नाम इस शिव मंदिर में। We join together as we sing.

साथ निभाए, बुढ़ापा ऐसा साथी जो आके फिर ना जाए। वो जो भी बात सुनाऊं मैं तुमको वो ही सुन ले तू सारे जहां से, फिर भी यकीन आता हो तो पूछ ले, ओ पूछ ले, अरे पूछ ले अपनी माँ से।

0: आपका धर्म आपका स्टेशन टीवी जागृति।
1: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।
2: मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा।
3: पंजाब बॉयज समय स्प्लिट हो गए।
1: लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हैं हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
4: वो नहीं,
5: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।